0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: चेली हेदी धै बालाई लोटरी पड्यो भने के बैंक को विवरण दिया पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो
2: धै धै बा तुमले लोटरी भर्दै थ्या ब
3: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पड्या त निको हो ब
2: कभै नभर्या लोटरी कसरी पढन्छ ब बा ईसा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कभै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कभै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कभैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहित में जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
5: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
6: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
5: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
6: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
5: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
6: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
7: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25

0: ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: बुका पिएर कब पेन सिलेर कब झलै फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आन्ला से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रट गई या झोला उड़ोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हे रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহার নাই নিকরছু।
0: উহে মারি তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইয়াহ হের ই পত্রিকা মে লিখল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুইটা ওই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্যহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: एसईई मा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना।
5: भीमडट्ट नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्ष प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, सामान्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
4: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
5: भर्ना हुने विषयहरू
4: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी,
5: नेत्र विज्ञान ओए।
4: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म। आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र।
5: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969900044, 9857880044 र 9762833921। वेबसाइट www.mahakalishikshalay.edu.np।
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
7: असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
7: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थार भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के लानगिल बजेट में विवाद में टीकापुर में सबसे भारी योजना 1 करोड़ सम के बजेट सरकार अपनी ही बनायल मापदंड पूरा कर नहीं सकल आरोप। जानकी गांवपालिका के बजेट आईटी टीकापुर में अन्योल में जानकी के वार्ड नंबर 5 में एकल दलित महिला उकरण के क्षमता विकास तालीम। सामाजिक संजाल में भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाइना विज्ञापन बोर्ड के निर्देशानु विश्वकप फुटबल में कैनाडा के ऐतिहासिक जीत। पूरा खबर। जानकी गांवपालिका गांव कार्यपालिका के कार्यालय से आज असार 5 गते प्रशासनिक सेवा बंद करना निर्णय करल बा। गांवपालिका के 18 अधिवेशन की दोसरो बैठक बैठना हो। बजट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुई नलकोर से गांवपालिका के सूचना जारी करती एक दिन प्रशासनिक सेवा बंद करने जानकारी दे गिल बा। नियमित प्रशासनिक सेवा बंद हुई सफे अत्यावश्यक सेवा भर देह सेकना गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट बटोले बाटै। यहां टीकापुर नगरपालिका आज बैठक अलग नगरसभा अनिश्चित हुई बा। नगरपालिका के कार्यवाहक प्रमुख के विषय में अदालत में मुद्दा परल पाछे आज बैठक नगरसभा ईस लांजिना नीति तथा कार्यक्रम अल्पत्र में पुरल बा। अदालत से फे समेत 8 गते विवादित पक्ष उकरण बोलाके सुनवाई करने रलकोर से एक अधिवेशन के समेत कार्यक्रम प्रभावित हुई रलक बताइल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख लानगिल बजेट विवाद में पड़ल बा। बजेट में सीमित मंत्री हुकरण सकेल मनोमानी करल पाछे प्रदेश सभा सदस्य हुकरण के बजेट के विपक्ष में बोलती रहल बाटै। प्रदेश सभा सदस्य हुकरण के भावना समेत नई सकलाक वर्षे सरकार अपना मापदंड समेत पूरा कर नई सकलाक बतैतियाल बा। और मंत्रालय के बजेट फे मुख्यमंत्री और प्रभावशाली मंत्री हुकरा आपन क्षेत्र में फरक क्षेत्र में योजना घुमाके कारण से बजेट प्रति समेत मंत्री और प्रदेश सभा सदस्य हुकरा असंतुष्टि जनाइति रलग बाटै। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री हीरा सिंह सार्की आपन मंत्रालय के बजेट अपना क्षेत्र में घुमैलक ओर से असहमति जना सकल बाटै। आंतरिक मामला में समेत मीडिया सुरक्षा विपद जैसीन विषय हुई पर्नामा विद्यालय योजना समेत दार्गिल बा। प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनार कार्यक्रम पुस्तिका हातमा नै पर्लक ओर्से बाहेर सुनलक भरमा बजेट पास गर नै सक्ना खालके बात बतैतियाल बाटै। यी क्षेत्रमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी समयमा बजेट कार्यक्रम नै पहिलेको मोबाइलमा पठाइगिलक फाइल अपना बिप्टैलक ओर्से पढ नै पहिलक प्रतिक्रिया देले बाटै। बजेटकी पूर्व सन्ध्यामा सुदूरपश्चिम प्रदेशके आर्थिक मामिला मन्त्री परिवर्तन हुई पाछ असार 1 गते मध्यरात में सत्तापक्ष के प्रदेश सभा सदस्य हुकरण धर के आर्थिक मामला मंत्री विक्रम सिंह धामी 37 अरब 25 करोड़ के बजेट प्रस्तुत करल रहें। टीकापुर में सबसे भारी योजना 1 करोड़ समके रहलबा। टीकापुर क्षेत्र में सबसे भारी विकास योजना बिहानी पुनस्थापना गिराह से लेके एयरपोर्ट जैना डगरा के लाख 1 करोड़ बजेट छुट्टा गिल बा। उस तरह का टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के भवन के लाख 1 करोड़ बजेट छुट्टा गिल बा। यहां छोट योजना 1.5 लाख रूपया सम के बजेट छुट्टा गिल बा। टीकापुर में पर्यटन क्षेत्र के 75 लाख बजेट छुट्टा गिल बा। सबसे ये बजेट 6 ठो मंदिर में केल कानून हिना कहल बा। उस तक पूर्वाधार में 9 करोड़ 50 लाख जटरा योजना परलबा कलसे। उस तरह का सशर्त अनुदान में 10 करोड़ 75 लाख रूपया योजना में समेत पटक पटक दोहरिया के टीकापुर नगर पालिका के सशर्त अनुदान में बर्दगोरिया गांव पालिका के योजना फे धरगिलबा। मुख्यमंत्री से वर्षों से समेत कहती इलाक टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केलाक 4,25,000 रूपया बजेट छुट्याएगिल्बा। सामाजिक विकास ओर सरकारी स्वामित्वमा विद्यालय क्याम्पसमा 1,44,00,000 रूपया बजेट छुट्याएगिल्बा। पूर्वाधार निर्माणमा अत्यावश्यक रलग टीकापुर अस्पताल के भवन निर्माण केलाक 5,00,00,000 रूपया विनियोजन करलबा। अस्पताल के अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी जानकारी करे बाटै टीकापुर अस्पताल वस्तुक नव दुर्गा स्कूल कर्णाली मावि जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय में शुद्ध पीना पानी के लाख बजेट छुट्याएगिल्बा। बजेट सीमित व्यक्ति हुक्रेन के हाली मुहाली हुलपाछे बजेट संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ना एकजने प्रदेश सभा सदस्य बटोईटियालबाटे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार हरेक वर्ष बजेट लानेबेर मुख्यमंत्री मंत्री हुक्रेन के क्षेत्र मकेल विनियोजन करल कहती प्रदेश सभा सदस्य हुक्रा विरोध जनैतियो अंतिम में पास करना अभ्यास फेत चलती आयल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका को निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू: वडा नम्बर 4 असार 5 गते अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकता नगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 पारित हुई बा। प्रतिनिधि सभा के बैठक में अर्थमंत्री डाक्टर सोनी मुवागले से समेत धरलक विनियोजन विधेयक 2083 पारित करी कहना प्रस्ताव बहुमत से पारित कर रखो। यागे सभामुख दोल प्रसाद अर्याल ऊ विधेयक समेत 2 से लेकर 11 सम दफावार निर्णायक अर्थ प्रस्तुत करल रहे। सांसद शुक्रा कृपराम राणा, पार्वती बिक, जोग कुमार बरबरिया यादव, ओस्तक संतोष सुब्बा, निटा समेत घटानी, परशुराम तामाङ, अर्जुन कुमार कार्की, नरेन्द्र कुमार केरूङ, रमेश कुमार मल्ला, सजिदा खाटुन, सिद्दिकी ओस्तक, युवराज दुलाल, यशुदा कुमारी बराल, ओस्तक गुरूप्रसाद बराल, मोहम्मद इस्तेक राई, बलावटी शर्मा, ओस्तक विष्णुमाया बेका, यज्ञ बहादुर बोगती, एन बहादुर महर, पुष्पराज कडेल, पद्म कुमारी अर्याल। विनियोजन शीर्षकमा समेत धर्गिल खर्च कटौती के प्रस्तावमा सभामा बहुमत से अस्वीकृत करल बाटै। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले से गैल जेठ 15 गते संघीय सरकार के संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व व्यय के वार्षिक अनुगमन बजेट प्रस्तुत करगिल रह। विनियोजन विधेयक के समेत मन्त्रालय के शीर्षक उपर यह असार 1-2 गते सभामा छलफल हुई रह। छलफलमा उठल प्रश्न के जवाब बुधबार ओ समेत आ सम्बन्धित मन्त्री से दैगिल बटवाइगिल बा। प्रतिनिधि सभा के और बैठक यह असार 5 गते शुक्रबार बिहान के 11 बजे बैठन तयार करल बा। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 वाडामा रहल एकल दलित महिला हुक्रनके क्षमता विकास केला तालिम आयोजना करल बा। तालिम उद्घाटन गर्दै वार्ड अध्यक्ष भीम बहादुर चौधरी सिखलबाट बुढेसकालसम्म सिखे पर्ना बटोइटी तालिम से सिखलबाट व्यवहारमा उतर्न अनुरोध गर्दैबाटै कार्यपालिका सदस्य पार्वती डंगौरा थारू से मोबाइल से फे ढेर ज्ञान सिक्न र लकुर्से काम लग्न बाटकेल हेर्न अनुरोध गर्दैबाटै एकल तथा दलित महिलाहरूका समाज हे हेर्न समाजमा हेर्न दृष्टिकोण फरक रहल बटोइटी वहाँ आगे बढ़ेन हौसला देन के लाग तालिम आयोजना करल बटोइलेबाटै वहाँ कार्यक्रम गर्ती ऐलको आगामी दिनमा फे काम गर्न बटोइलेबाटै स्वागत वाडा सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्य केशान्ति देवी चौधरी कर्ल रहें कलश संचालन कर्मचारी दुर्गा प्रसाद जोशी कर्ल रहें। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुइतिरलक आधारहीन एवं भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाइन विज्ञापन बोर्ड से निर्देशन दैसकल बा। साथै ऐसिन विज्ञापन प्रसारण करलक भेटाइलमा कर्रा कानूनी कार्यवाही गर्न बोर्ड से जनाइल बा। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुइतिरलक भ्रामक तथा झूठा विज्ञापन उपर कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ेन सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना सम्बन्धित निकाय हे निर्देशन समेत कर्सेकल बाटै संचार मन्त्रालयको चासो पाछे विज्ञापन बोर्ड से विफेक दिनके सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानून से निषेध कर्लाको आवश्यक होल्डिङ ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नै हुलक औषधि जन्य पदार्थ हो सामग्रीको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बढ़ती गैलक कहती ऐसिन गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दैगिल्बा। बोर्डके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्री के अनुसार सामाजिक सञ्जाल मार्फत तमाम औषधि जन्य सामग्री के भ्रामक प्रचार प्रसार करके सर्वसाधारण भ्रम में पर्ना ठगी करना तथा जनस्वास्थ्य संगे प्रत्यक्ष सरकार धरना आधारभूत मापदण्ड समेत के उल्लंघन हुईलक विषय में उजुरी परल बताइल बा। ऐसिन विज्ञापन से उपभोक्ता हुकरण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पर्ना के साथ झूठा दावी के आधार में आर्थिक ठगीमा समेत हुन जोखिम बढ़ती रहल बोर्ड के निष्कर्ष निकाल बा। बोर्ड से विशेष करके काम ऐसे करना समेत कपाल उमरना कपाल लम्मा उसमेत बोखलार बनाइना हड्डी तथा नशा सम्बन्धी पीड़ा चोखैना कना शरीरमा समेत बोसो घटैना मृगौला सफा करना शरीर के समेत विषक्त पदार्थ हटैना लगायत के दावी करल औषधि जन्य पदार्थ तथा अन्य सामान समेत प्रकृति के सामग्री प्रचार प्रसार सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा आइतिर अलग जनागेल बा। ऐसिन सामग्री के प्रभावकारिता के बारे में वैज्ञानिक आधार आधिकारिक स्वीकृति ओ समेत आवश्यक प्रमाणीकरण बिना के नै आकर्षण प्रचार सामग्री तयार करके सर्वसाधारण हुकरण भ्रमित बनाइन काम फे बढ़ती रहना क्रममा बोर्ड से उल्लेख करल बा। खोज खबरमा एक घरी विश्राम पाछ फेर सेबी सुन्तिरबी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000-75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक शिक्षक समाजसेवी बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: बाबु काल मनीष मेडिकल

0: इस मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
1: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046777417।
2: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। शैक्षिक सत्र 2083-84 मा कक्षा 11 औ 12 के छात्रवृत्तिमा पुनः आवेदन देन काठमाडौं महानगरपालिका से सूचना जारी करल बा। महानगरपालिका से छात्रवृत्ति कार्यक्रम के पहिलो दोस्रा सूचीमा मनोनयनमा नै पर्ला को अन्तिम मनोनयन मा समेत समावेश हुन चाहना परीक्षार्थी उक्रन के विषय परीक्षामा संस्था से प्राथमिकतामा छनौट करके अनलाइन फार्म भर्ना सूचित करल बा। यी वर्ष के लाग महानगरपालिका भित्तर के 145 शिक्षण संस्थामा 4857 कोटा निर्धारण कर सकल। निर्धारित कोटा मध्ये पहिल मनोनयनमा सूची मनसे 3051 विद्यार्थी, दोस्रा सूचीमा 230 जाने करके 3281 विद्यार्थी छनौट हुई पाछे बाँकी रलक 1576 कोटा के लाग विषय हो शिक्षण संस्था के प्राथमिकतामा छन्ना अवसर प्रदान करगिल परीक्षा समिति के संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नवराज ढकाल जानकारी दिले बाटे। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सरकार के भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलता के नीति लहल बतागिल बा। गुरुङ प्रहरी के समेत केन्द्रीय तथा प्रदेश प्रमुख उक्रन माठट के कर्मचारी उक्रन निगरानी करना हो कार्य सम्पादन के आधार में दण्ड पुरस्कार देना निर्देशन देले बाटे। गुरुङ और वर्ष दुई प्रहरी और समेत 79 थो समेत भवन निर्माण करना बजेट विनियोजन हुईलक जानकारी देले बाटे। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के पहिल राष्ट्रीय महाधिवेशन असार 7 गते से लेकर 9 गते सम भरतपुर में होती बा। महाधिवेशन के लग 18 ठो तमाम उपसमिति तैयारी करती रहलक बा। अब महाधिवेशन के तैयारी तीव्र रूप में आगे बढ़ायल बा। महाधिवेशन के उद्घाटन भरतपुर महानगर पालिका 10 स्थित के जिला प्रहरी कार्यालय चितवन आगे के गेस्ट हाउस चौरमा समेत ओ बंद सत्र में उद्योग संघ के समेत चितवन में हुईना करके तैयारी हुई रहल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी केन्द्रीय सदस्य राजन गौतम जानकारी दिले बाटे। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले राष्ट्रीय गौरव के आयोजना हे समेत टोकल समयमै उर्वाई पर्ना सरकार उच्च प्राथमिकता देहल बटोले बाटे। प्रतिनिधि सभा के बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 उपर हुईलक शीर्षकमा छलफलमा राष्ट्रपति के कार्यालय, उपराष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद के कार्यालय, माठत के निकाय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग संगे सम्बन्धित तमाम शीर्षक उपरमा छलफलमा उठल प्रश्न के जवाफमा बालेन्द्र शाह के ओर से जवाब देती अर्थमन्त्री डाक्टर वागले से यी धारणा धरलक हुए। अमेरिका और ईरान बीच के युद्ध अन्त्य गर्न ऐतिहासिक शान्ति समझौता में हस्ताक्षर हुई बा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेसी से समेत शांति समझौता में छुट्टा छुट्टे हस्ताक्षर करल बतवा गिल बा। अमेरिकी से इजरायल संगे मिलके फेब्रुवरी 28 में ईरानी ऊपर आक्रमण करल संगे भीषण युद्ध शुरू हुई रहा। युद्ध में ईरान से उच्च नेतृत्व गुमैना के साथ भारी जनधन के क्षति समेत करल बा। ओ कैनेडा फीफा विश्व कप 2026 में कतार है 6-0 गोल से पराजित करती विश्व कप के इतिहास में पहल जीत दर्ता करल बा। कैनेडा के जीत में जोनाथन डेविड से हैट्रिक पूरा करल बाटन कर से कतार के दुई खिलाड़ी रातो कार्ड पायल रहे। जीत संगे कैनेडा दुई खेल मन से 4 अंक ज्योति समूह बी के शीर्ष स्थान में रहल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सिलानगिल बजेट विवादमा टीकापुरमा सबसे भारी योजना 1 करोड़ सम्मके बजेट सरकार से अपराह बनायल मापदण्ड

0: पूराकरण नैसेक लाख आरोप जानकी गांव पालिका के बजेट ऐठी ठेकापुर में अन्य उल्टा जानकी के पांच नंबर वाड़ा में एकल दलित महिला उकरण के क्षमता विकास के लग तालीम सामाजिक संजाल के भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाइन विज्ञापन बोर्ड के निर्देशन हो विश्वकप फुटबल में कैनेडा के ऐतिहासिक जीत लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुनसेक व्याव्य के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहे राम राम।
1: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
2: असार 6 गते पहिलो शनिबार
1: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
1: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825367772।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटर तुहार रामपुरान दिदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुगर बना कर ल बाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाट वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गल गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846349261।
6: कार्यक्रम गोचाली अब से प्रत्येक हफ्ता के शुक्रवार 10:15 से करीब 11 बजे
7: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: अप्लाई गर्नुहोस्।
1: आओ आओ, तू पायलट से आईना मत झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, डर लग के घूमत रहते हूँ, स्टमक में तो हलचल नहीं कर, मोल सपो करके छपेना तो पायलट जाके
1: मोल सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ, मोल सपो देव गोपाल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूल से थी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ थले पकड़ा नहीं भी
2: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत पत्ता मुला कुछ देर पास आसम के सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी डेंटन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से भी था
3: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सपोहना पकड़ना खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा समी सपवा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में सेव दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
7: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर झग तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
8: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
9: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
6: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
10: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस
11: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस
12: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
10: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484648673 र 98164860204

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
1: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
0: सानो कुरामा तनाव हुने,
1: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
0: कुलटमा लाग्ने,
1: छटपटी हुने,
0: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
1: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
2: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुगर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाइका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

0: ट्राफिक कबू का पी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बड़ी थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल झोला दस का ट्रस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহা আপন অনুহার বিগর কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহা পাঠাই তো। ইহা হেল ই পত্রিকা মে লিখল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধি সমস্যা রহল বিরামি হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আস্তে বা জৈবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগর কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্বিহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: ओहो, मुसा कुदिरा चाहिँ हेर्नु त।
5: त्यही त बुढी, वर्षायामको समय पनि छ, भगारीको ढोका खुलै छ कि मुसा आयो भने त अब मुसा खोज्दै सर्प पनि आउन सक्छ।
4: ओहो, हो त, ठ्याक्कै सम्झे। घर वरिपरिको झाडीहरू पनि बढेर कत्रो कत्रो भएका छन्, काट्नु पर्ने।
5: यसो गरौँ बुढी, त्यसो भए भोलि मिठो नास्ता खाउँ, आँटा पुरी तरकारी, अनि सपरिवार मिलेर सरसफाई गरौंला, अनि वरिपरिका फोहोर व्यवस्थापन पनि गरौंला, हुन्न?
4: हुन्छ बुढा, यस्तो बेलामा त अग्ला घाँस फोहोर मैला भएका ठाउँहरूमा सर्पहरू लुकेर बसेका हुन सक्छन् नि, होइन?
5: त्यही भएर त भनेको, छोरी समीरा, छोरा विवेक, तिमी र म मिलेर घर वरिपरि भएका अग्ला अग्ला घाँस काटौ, हिजो ल्याएको दाउरालाई पनि घर नजिक अलि पर व्यवस्थापन गरौं, भखारीको ढोका पनि सर्प मुसा केही नपस्ने गरी मर्मत गरौं, अनि त घर वरिपरि खाली र सफा भएपछि सर्पहरू आउन त त्यसै कम हुन्छ नि।
4: हुन्छ बुढा, भोलि शनिबार पनि हो, फुर्सदिलो बिहान पनि छ।
6: सर्पहरू वर्षायामको समयमा सुक्खा ठाउँमा बस्न मन पराउँछन्। यस मौसममा आफ्नो बास स्थानमा पानी पस्ने हुँदा सुक्खा ठाउँको खोजीमा उनीहरू बाहिर निस्कन्छन्।
7: मुसा, कुखुरा जस्ता आहारको खोजी गर्ने क्रममा पनि सर्पहरू मानव बस्ती नजिक आउन सक्छन्। भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज

0: टिकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखो तुहिन, टीकापुर बाजार में देखो तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 5-6 और 7।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो, कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं छिप ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी हरी थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: यदि मुस्कट और ताज हेरो तो पुरवा
1: वह तो हेर बुढ़िया बरखा समय थे बा बखारिक मुहका रुक कर बाकी मुस्वा आयल कला से आबा मुस्वा खुशी सब वह आई सकता
0: ओहो होनी का सब का समझनो औरत अंदर पादा जफास से बाहर से अच्छा का पहिल बा काट पर ना रहो
1: हाँ असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाए तो बासी खाई दूसरा असल परिवार अब मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं
0: हुई था वो गुरुआ असिन डाला मत ध्यान घास पोहर झपास भी था उमा साफ नुख बैठल रह सकते ना
1: वो और से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मेरे का चपट डारा पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफारो सफा फूल से साफ पहना का उत्साह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लब

0: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा
1: यही असार 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन
0: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नसाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण को उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म।
1: डाक्टर आउने दिन असार 13 गते दोस्रो शनिबार।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोहर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: चेली हेदी धै बालाई लोटी पढ्यो भने क्या बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइजान्छ भन्यो
1: धैधै बा तुमले लोटी भर्राइ थ्या
2: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो
1: कभै नभर्या लोटी कसरी पढन्छ बा इसा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
4: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्दै भो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
5: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुवा बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5146 26

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा फिर उस्त पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई या झोला उद्योग में से वहाँ झिंगान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: ए रुको रुको रुको
4: के भयो किन कराएको यस्तो
3: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
5: इन्सेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
4: हो र
3: हो नि इन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
6: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 हास डायल गरी वा एन्सेल एप मगाइ लिनुहोस् एन्सेल नेपालकै लागि

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि भाँची गयो।
0: यतिकै लागि त सामुएल जोलस बनेको, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्छ नि त्यहाँ।
1: आज त सन्तेका बाले मनकै कुरो हर्यो, ठोट त बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर टिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9864-44-1208, 9846-39-261।
3: नरेश दादु, मैले आफ्नो फोन आइकि डर त्याग गइनु है भौजी, कहाँ बाटी?
4: ऊ गोन्देमा सुटल बाटी बाबु, चोली नभरि
3: भौजी कहाँ ठिकाजन अपना र खाजर पाबेर सफा सुखर बनाएर बाटी त तर फिर पार्टी तो जा रहा अपना है ना?
5: यहाँ पोली को कतल हो नानी, अपना एम्बुलेंस है ना, खबर तो करना बाटा कटा बेर मको आप ना हो
3: ना से भौजी हमरा बाटी अपना है ना, कुछ नहीं हुई बिन गुआरा है ना, जिनसे लेख दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाकला से यहाँ बैठा कर भौजी है ना, सर पर उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
4: ये बेला तक खाना जात फिर दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
3: हो अपना ठीक करी डाक्टर और निकट बेरमेन कुछ से खवाईली हुई
6: सपुआ कट्टी की सहज वातावरण बनाए सपुआ कटलक अंग स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घड़ी पेटी मुन्द्री बाकल से सफर करा दी बेरमिया अकेले से झन समस्या बिना हुए कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपुआ कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाटे कठ असिक कर्ण से रक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपुवा दशलक शरीरको भाग काठ खाक पाउन अवस्था थिए आइसक था।
7: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता मलाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेभिठा।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: मी प्रयासम तपदस्तक दरम्यान रसरस अंगनामा लानपी दसे विनरह
1: एक गति ना हमरा सहयोग कैखल डेंटी बाटी देन मोटरसाइकल घुमाकर धरने करी ना
0: बैठा बैठा दरम्यान रसरस मोर पास बैठाई को एकजना ब्रह्मान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम सुगाईवीर ब्रह्म्या बेहोश हुई से नापिला को से पास से पकड़ का बैठा पड़ता का
2: ब्रह्मान अगर हुई न कही के मई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लेना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेर का सुचा का लगभग एंटी भेनम हुईला उपचार केन्द्र में लै जाए पड़ता
1: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वार लगा के ला दे
0: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई जी
3: सफर डज दारण कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित लीना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीभेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा रही सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
7: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
8: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
9: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
6: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
10: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
11: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
12: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
13: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602004
14: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के उस्ता पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उकला सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप समरपात्र नेपाली पात्र में फिसुंटी रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से विश्व सिकल सेल सचेतना दिवस के अवसर में टीकापुर में सरकार वाला संघ तर्किया टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 4 सिंचाई सुविधा क्लर्क 9 जना किसान 6 ट्यूबलेट वितरण ग्रामीण विद्युत सेवा वितरण में सहयोग स्कार्ट स्थापना दिवस प्रभाव फेरके नवनिशासन समाज सेवा बाल बालिका के व्यक्तित्व विकास के लिए स्कार्ट गतिविधि नियंत्रण पर्णा केन्द्रीय सदस्य के ढुंगा लगे है ओ इजरायली सेना द्वारा लेबनान में आक्रमण 16 जना की मृत्यु टीकापुर में 300 बढ़ी सिकल सेल संक्रमित ठूलवाट पालिका के सिकल सेल के ब्रह्मेहोकन निदान और सहज उपचार के लायक सिकल सेल सहकारी स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सिकल सेल केन्द्र संचार मलन जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवल सिंह सार्की के अनुसार टीकापुर में 2000 नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कलक 300 बढ़ी संक्रमित फैलापलक जम्मा 80 जना कड़ा खालके ब्रेमी होलबाट पालिका के कुछ दिन आघ 1000 विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण कलबाट वकर नतीजा आइना बाकी बा पालिका के ब्रेमीको निदान हो उपचार सहजता के लाग काम करती रहलबाट सिकल सेल थालासी नियम से लम्बा समय से ब्रेमीको र लक्षिकापुर सात के अनुपा चौधरी छोट से सिकल सेल थालासी में के कारण समस्या भुक्ति रहलबाटी आर्थिक हिसाब मजा परिवार में हुर्कलक अनुपाह छोट विलक परिवार में ढेर उपचार कलक जतरा उपचार कलक फे सन्चो हुल पाछ नेपाल उपचारमा गैलक बिला डाक्टर राजन पाण्डे भेटल पाछ सिकल सेल थालासेमिया हुलक उपचार शुरू कला रही लम्बा समय से उपचार के करती रह अनुपाह नियमित रगत चढ़ेपना उपचार में अस्पताल बैठपना समस्या विगत में ढेर मानसिक तनाव भुगलक अनुभव बा हाल अनुपाह सिकल सेल समस्या नै हुलक पुरूष विवाहित कर सकलक अनुपा आजकल सिकल सेल के ब्रेम होकन मानसिक स्वास्थ्य उपचार कसी करना हो जानकारी अभिन्ता दिलबाट और ब्रेम होकर सिकल सेल टीकापुर नगर समिति के अध्यक्ष लाल बहादुर चौधरी के जीवन युवा अवस्था में ढेर रमाइलो रह संग भैया जम्मा हुईना गांव में खसी छिगरी कटना समूह में बैठके खैना करना 2072 साल में सिकल सेल हुलक था पर पाछ एकठो तथ्य में खैना लाल बहादुर के संग सकुदाह दूर हुईला वहां के दुर्व्यसन करना लगला लाल बहादुर के समाज सो संघरण के दुर्व्यवहार के कारण 300 आत्महत्या के प्रयास करती रह बाट वहां के ढेर मानसिक तनाव में हुलक बिला शारीरिक मानसिक रूप जैती कलक देखलक एकजना और संघरण सम्हलस वहां के सम्हलक आजकल सिकल सेल अभियंता के रूप में समाज में काम करती रह टीकापुर नगरपालिका सामाजिक विकास समिति के संयोजक लाल वीर चौधरी थारू समुदाय में सिकल सेल समस्या भर्ती देखलक पालिका के प्राथमिकता देखे छिट्टो सिकल सेल केन्द्र स्थापना कलक स्वास्थ्य बीमा जैसे कार्य में चकटी रह बोटिल वहां उग्र माके आधार में अन्य कार्यक्रम समेत करती रह बोटिल टीकापुर नगरपालिका नंबर 4 सिंचाई सुविधा किलाक 9 जना किसान कन सानो ट्यूबलेट वितरण कलबाट वडा कार्यालय के वडा के 75% किसान के 25% में लगानी में ट्यूबलेट वितरण कलबाट सिंचाई सुविधा नहीं हुलक ठाउँमा सिंचाई सुविधा पुगलक उत्पादन वृद्धि करना उद्देश्य के वितरण कलक वडा अध्यक्ष लालवीर चौधरी के कहाइबा वडा के हरेक वर्ष किसान कन सिंचाई किलाक सकटीलाबाट 9 वर्ष में करीब 100 किसान हुकन ट्यूबलेट वितरण कलक चौधरी बटिलोट कार्यक्रम में वडा सदस्य तुलसा विक वडा सचिव जग बहादुर कार्की बोल रहे वडा नंबर 4 के ग्रामीण विद्युत सेवा विस्तार में सकल किसान में खेतवासम विद्युत सेवा पुगलक किसान हुकन सिंचाई में सह सुना हुलक यह वर्ष 2 किलोमीटर सड़क में विद्युत सेवा विस्तार सकल वडा अध्यक्ष चौधरी के कहाइबा
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली। पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
3: ईसीजी सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: नेपाली स्काउटकै 75 स्थापना दिवसकै अवसरमा टिकापुरमा प्रभाव फेरलक करगिलबा नेपाली स्काउट स्थानीय परिषद टिकापुरकै आयोजना महिला कार्यक्रम ध्यरसिंह विद्यालयकी स्काउट टू प्रभाव फेर्न कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट नेपाली स्काउटकी स्थानीय परिषद आयुक्त सुरेश उपाध्याय स्काउट स्थापना दिवसकै अवसरमा प्रभाव फेरलक कर्लकबोटीबाट नेपाली स्काउटकी केन्द्रीय सदस्य काशीराम ढुङ्गाना अनुशासन समाज सेवा हो बाल बालिकाकी व्यक्तित्व विकासका लागि स्काउट गतिविधि निरन्तर विपन्ना बोटीबाट स्काउट दिवस म स्काउट स्काउटकी केन्द्रीय सदस्य तथा एक तहगण स्काउट ताली सम्मान कलर है। राष्ट्रिय सभाकी सदस्य गत वैशाखमा बागमती लगायत लदिया किनारमा हटैला सुकुम्बासीकै खैना बैठना औषधि उपचार गर्न व्यवस्था मिल्न महाकर्लबाट राष्ट्रिय सभाकी आजकै बैठक सुन्ने समयमा राष्ट्रिय सदस्य गोमा देवी तिमिलसेना होल्डिङ सेन्टरमा धलक सुकुम्बासी औषधि हो पानी फे नैपलक दावी कर्लबाट सांसद मदन कुमारी शाह गरीमा सुकुम्बासीकै 2 महिना बितलक उचित व्यवस्था गर्न नाइसकलक बोटेलोबाटी राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्त देवी राई घरेलु हिंसा पीड़ित न्याय दिन व्यवस्था मिलन महाकर्लबाटी राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरूङ स्थानीय स्तरमा सेलक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नै पर्लक पहुँच के आधारमा पर्लक गुनासो कर्लबाटी राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत सोमबार अखिल तिहार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी पदाधिकारी खोन बोलाकी 9 घण्टासम्म दबावमा धल्लक काम गर्नक लगलक आपत्ति जनैलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्र मुक्त कमेकलाक बहारी बस्ती व्यवस्था कलसफे रोजगारकी व्यवस्था नैहुलक समस्या हुलक बोटलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनार अन्तर्जातीय विवाह कर्ना छाइके वर्द्यमा जिउँदो क्रिया र कर्ना लगायत दलित सुकुम्बासीकी प्रभुटी हल ज्यादातीकै विषयमा कानूनी कार्यवाही नहिरो बोटिलोबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्मा बन्द हुलो चिया उद्योगकी विषयमा काकर्ती हलबाट के जिज्ञासा धरलबाट सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरह निर्माण व्यवसायकी सन्दर्भमा मन्त्री दिलक अभिव्यक्तिबारे सरकारकै ध्यान आकर्षण गर्नबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
0: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
10: के तपाईँलाई किचन, वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: दक्षिण लेबनान के नवातिह जिल्ला के आवासीय क्षेत्र शुक्रबार हुलक इजरायली हवाई आक्रमण कम्तीमा 16 जनाकी मृत्यु हुलक। लेबनान राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी जनलबा हारूफ सर्किह कफर सर सहर लक्षित गर्न आक्रमकलक जन्दसेफे कफर रेमन कफर टेबनिट ओ अन्य लगह इलाकामा हुलक आक्रमण हताहत तथा घाइते ओ विपत्ता बनिलक रिपोर्ट कलबाट इजरायली लडाकु विमान तिहा सहर कफर टेबनिट नवा तिहा अला फाका ओ रिहान हेडसँग लक्षित गर्न हवाई आक्रमणकै श्रृंखला शुल्क लग्नेबाट इजरायली विमान पवच क्षेत्र सहरकै विश्वविद्यालय लगायत जिल्ला थियोसिन ठाउँमा आक्रमण कलक प्रारम्भिक रिपोर्टकै अनुसार 8 जनाकी मृत्यु हुलक जनलबाट अरू आक्रमणकै सर्किहा ओ डुयर सहरकी बीच क्षेत्रमा लक्षित गर्दै एक घरमा ध्वस्त पलक 4 जनाकी मृत्यु हुलक जनलबाट कफरमा हुलक इजरायली हवाई आक्रमणमा 3 जनाकी ज्यान गैलक जनलबाट इजरायली ड्रोन डुयर नगरपालिका भवन लग मोटरसाइकल लक्षित गर्ना कला आक्रमणमा 1 जनाकी मृत्यु हुलक ओ अब एकजना घाइते हुलक जनलबाट गोलाबारीसँग जे जीत सहरमा फेरि श्रृंखलाबद्ध ड्रोन आक्रमण हुइल लेबनान लगायतमा क्षेत्रीय तनाव कम कर्न उसकी हाल हुलक इरान अमेरिका सम्झौता के बावजुद लेबनान इजरायली सीमामा थप आक्रमण रोकक लाग जारी कूटनीतिक प्रयासकी बीचमा आक्रमण जारी लग जनलबाट आप खेल खबर क्यानाडाकी फिफा विश्वकप 2026 कतार 6-0 गोल अन्तर पराजित गर्दै विश्वकप इतिहासमा पहिलो जीत दर्ता कलबाट क्यानाडाकी जीतमा जोनाथन डेभिड ह्याट्रिक पूरा कलसेफे कतारकी दुई खेलाडी लाल कार्ड पहिलो रहे जीतसँग क्यानाडा दुई खेलमा से 4 अङ्क ज्योतिष म बीके शीर्षक ठाउँमा उक्लबाट यही समाचार सँग खोज खबर गरेर जेनासे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेर सेक्छु। विश्व चिकित्सा सचेतना दिवसकै अवसरमा टिकापुरमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिंचाइ सुविधा केलाक 9 जना किसान सानो ट्युबलेट वितरण ग्रामीण विद्युत विस्तारमा सहयोग। स्काउट स्थापना दिवस प्रभात फेर्न अनुशासन समाजसेवा बालबालिकाकी व्यक्तित्व विकासका लागि स्काउट गतिविधि निरन्तर हुइपर्ना केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गानाकी कहे। ओ इजरायली सेनाद्वारा लेबनानमा आक्रमण 16 जनाकी मृत्यु। जीजा बक्ला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिटी बक्ला खोज खबर चाहिँ मिता चौधरी बिदाई टू एकर पाछा 6 बजेकी खोज खबर सुन्न सिक्बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर सुन्छु रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गति।

0: का हुई कमल आइने बुक खाइल बाटो त
1: हेरी न काका खाई फुला टूरे बारी में गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सबो कटलक बीस तक उपचार कर सर्पदम से उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सब पकटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूँ सर
0: तर तर कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक्षेप चिंता नहीं पड़त
1: खाई ना तब ना ट्रेन कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मरछवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र ले जा दी रे बाबू संदेश रोक छत बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटी वेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर लह पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: संजय ट्रेड एण्ड सप्लायर्स जमराफारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
1: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848528।

0: गरेको भए होइन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
3: कुटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरजस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
2: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
3: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
2: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ट्ज।

0: मेरो नाम कमला सिग्राथ हो, म एकल महिला हो। मेरो श्रीमान बितेको 2 वर्ष 9 महिना भयो। घरमा एक्लै छु, छन त 2 छोरा छन्। एक छोरो वहाँ बम्बईमा फराद किनेर बसेको छ, एक छोरो कोलपुर घर बनाएर बसेको छ। म एक्लै छु, सबै काम आफै। गाह्रै छ नि, कोही अब यस्तो यस्तो कोही सोध्दैनन्, के गर्दैनन्, भन्छन् पोइको रा त सबैको रा रे, अनि पोइ छैन त कोही छैन। त्यस्तै हो त एकल महिलाको। अनि खाएको लगाएको पनि रिसै मान्छन्, कहीँ घुमे पनि रिसै मान्छन्। यस्तो हुन्छ एकल महिला, बस्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ कि एकल महिलाको। कच्ची घर छ, यस्तो टिन छाया छ, आन्ध्यायो भने त्यो टिनलाई उडायो भने म त कालो हालेर थिएछु कि, टिन उडायो कि भनेर। त्यस्तो अलिअलि यस्तै कसै मालिस सालिस मसाल गर्छु, अनि त्यो 1-2 रुपियाँ आउँछ। त्यसैले जो अनि नसा दबाई हुन्छ त, त्यो नसाको काम गर्छु।
1: म नाम फुलमती थारू चौधरी। थारू बिटल बहुत वर्ष हुई गेलस, म बहुत दुखियारी मनै हुँ। एक हिसाब से मोर थारो बिटल मोर घर में कोई बैठे फिर नहीं, कोई ऊंचा फिर नहीं करे। मोर जगह न जमीन 2 ठोलर का, मोर छोट छोट है 6 लर का। एक ठो छाई थारो घर गए गिल, एक ठो छाई भोज पाछे करनू। अब वकर समस्या मोर बहुत समस्या रहे है, बहुत समस्या। मैं कैसे के बचनू, कैसे के टरनू, कह के मोर बहुत दुख महीन लागल। फिर मोर एक बाबू मैं मरे फिर नहीं सीखनू अपन बच्चन देख के। ये इत उत बोक के मैं अपन लड़कन हुरकैनू बढ़ैनू, तब महीन को खुवैनू पिवैनू। तो मैंने हुरकल आता है तो ये अब महीन है ठीक ऊँच कर ले आता है ना, डेट है मैंने खाने पीने सब ही रताई। अब थोड़ा मजा पा
2: यसै जनावरसँगै खोज खबरको अन्त्यमा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू एकपटक फेरि। जानकी गाउँपालिकाको बजेट 1.12 करोड, प्रशासनिक भवन र खानेपानी निर्माण प्राथमिकता, कक्षा 12 नतिजा सार्वजनिक। वीरेन्द्र विद्या मन्दिरका हेमन्त बहादुर साउदले ल्याए 3.88 GPA। विश्व सिकल सेल सचेतना दिवसको अवसरमा टिकापुरमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया। सिकल सेलका बिरामी थुप्रै समस्या झेल्दै। स्काउट स्थापना दिवसमा प्रभात फेरी। अनुशासन समाजसेवा र बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि स्काउट गतिविधि निरन्तर हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गानाको बनाई। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 ले सिंचाई सुविधाका लागि 9 किसानलाई सानो ट्युबलेट वितरण। ग्रामीण विद्युत सेवा विस्तारमा सहयोग। हवस् त अहिलेलाई खोज खबर यति नै। हाम्रो अर्को समाचार 9:55 बजे खबर संक्षेप सुन्नुहोला। अहिलेको खोज खबरबाट म दुर्गा बिदा हुन्छु। नमस्कार।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: विशेषज्ञ मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
1: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
3: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
4: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
3: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
7: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848558।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
8: मै नै जाइ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
3: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
4: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? 500 से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
3: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
4: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न, कबू कहुँ र घुम जाए त था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848513426।
9: बैंकले कभैलै कसै अवस्था मिलै तम्रो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दु खोज्जाछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू उनीहरू विवरण मागिबर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बचौं।
10: सिद्धार्थ बैंक पठियाई जनहितमी जारी सन्देश।
11: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
12: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
13: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
14: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।
15: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध कही। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कू जाने सहयोग करी।
2: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखो तुहिन, टीकापुर बाजार में देखो तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।